भंडारा जिस तू देह सक्या चारा नानक सच सवरण हारा आसा महला पहला काखा जी माओ विसरै मर जाओ आखण्यो का साचा नाओ साचे नाम की लागै भूख उत भूखाए खाए चलिया है दुख सो क्यों बिसरै मेरी माए साचा साहिब साचा ना रहाओ।

तीर्थ हमरी रह रास रहाओ। अर्जन के वड़ भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिला तृप्ता सहाय मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया उनते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जी वास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास। रागू जरी महला पंजवा, काही रे मन चितवै उद्यम जा आहर हर जी उपरिया, सैल पत्थर मह जंत उपाय।

जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिने आप संभारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पाल मोहबत कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्तूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट की पट पट की जाने। जब कर करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह पारा। जब आकर करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ।

चौपाई संबत 1755 अर्ध सहस फुन तीन कह जाय भाद्रव सुधी अष्टमी रव बारा तीरु तद्रव ग्रंथ सुधारा।

तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण की ओर अकबर कथा प्रसंग साध असाध जानो नहीं बास बाद दे बाद ग्रंथ सकल पूर्ण की ओ भगवत कृपा प्रसाद सवैया।

जिसका सब सदहरु जे को खावै जे को पुंचा तिसका होए उधारू। एह वस्तु तजी न जाई नैतन तराख उर्तहरू।

पौड़ी तिथ तू समरथ जिथ कोई नहीं उथ तेरी रख अग्नि उदल माहे सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड़ जाहे पाओ जल बिखमस गाह गुर शब्दी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे कल मह एहो पुन गुण गोविंद गाहे सब सहनु कृपाल संभाले साहे साहे बिरथा कोई न जाए जिया बैत दिया सौक महला पंजवा

0: स्वरूप थे अनूप सिंह सारे थे।
1: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियां वादाहियां। राग रतन परवार परिया, शब्द गावने आईया, शब्दों तंगा बहु हरी केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा, कार्ज सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, करता तेरा सब किछ है, जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो, जिस दियाँ यह वड्याइया। कह नानक सुन हो संत हो, शब्द तरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शब्द तित कर सुभागा, कर सुभागा शब्द वाजे, कला जित करत हरिया। पंच दूत तुद वास कीते, काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ, तित करा न हद वाजे। आनंद सुन हो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पए सरसे, पूरे गुरते जान। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहिया भरपूर। बिनवंत नानक

गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरल मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर दौत पुन वड्डा हे। रहाउ साकत हर साधन जानिया तिने अंतर हो मैं कंडा हे। ज्यो ज्यो चलै चुबह दुख पावै है जम काल सहस्र डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाने दुख जन मरण पव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शुभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ वड्डा हे। जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे। रा गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की वेला इहां खाट चलो हर लाह आगे बसन सुहेला। आउद घटै दिन सरा नारे मन गुर मिल का सवारे। रहाओ एहो संसार

कर्म सब होई दुढ़ चाच सकै न कोई। एक बार जिनत मैं संभारा काल फास्ती ताहू बारा, जिन नर नाम तिहारो कहा दर्द दुष्ट दुख ते रहा। खड़ कीत मैं शरण तिहारी आप हा दैलेहू बारी, सर्व ठोर मोह हो सहाई दुष्ट दुख ते लेहु बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को छह करता। श्री अस्तो जो पह दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकाला। मन बांछित फल पावे सोई दुख नत सह व्यापत कोई अड़ेल। सुने गोंग जो जाहि सुरसना पावई, सुने मूड़ चित लाई चतरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट नंग तिन नर के रहै, हो जो जाकी एक बारू चाउ पाई को कह चाउ पाई। संबत सुत्रह सहस पुण जय अर्ध सहस पुण तीन कह जय। भाद्रव सुधी अष्टमी रबारा तीर उस तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया।

एक न माने सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक न जाने श्री स्पान कृपा तुम्हारी कर मैं न कहूँ सब तोहे बखाने दोहरा सागल।

तो कथी व कथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किन न पाया चतुराई न पाया किनाई तू सुन मन मेरे आए हि माया मोहनी जिन भरम भुलाया माया ता मोहनी तना की ते जिन ठगौली पाया कुर्बान की तत सब टहों जिन मह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किन न पाया ए मन प्यारे आ तू सदा सस माले एहो कुटुंब तू जे देखदा चला नाही तेरे नाले साथ तेरा चला नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ ऐसा काम मूले न कीचै जित अंत पछोताईऐ सतगुरु का उपदेश सुन तो होवै तेरा नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सस संभाले अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया अंत न पाया किना तेरा आपना आप तू जान हे जी जन सब खेल तेरा क्या को आख बखाने आखै तां वेखै सब तू है जन जगतू पाया कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया सौर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जन सब तू पाए कवेक परसन आया लाभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनु आप तुठा तन अमृत गुर ते पाया भगता की चालन राली भगता हकेरी बिख मार चलना लाभ लोभ अहंकार ता तुसना बहुत नाही बोलना खन्ने हो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजया हर वासना समाणी कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली ज्यो तू चलाहे तिब चला स्वामी हो क्या जाना गुण तेरे जिब तू चलाहे तिब चला जन मार्ग पावे कर कृपा जन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावे जिसनु कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारा सुख पावे कह नानक सच्चे साहब जो पावे तिब चलावे एहो सोहिला सबदो सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया एह तन का मन वस्या जिन ध्रोह लिखिया आया एक फिरा कनेरी करह गल्लां गली किन न पाया कह नानक सबद सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जनम जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब साथ से पवित संगत सबाईया कहंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी साधन उपजा बिनसा जसा साना जाए न जाए सह सकत संजम रह कर्म कमाए सहसा जियो मलीन है कित संयम धोता जाए मन तो बहो शब्द लाग हो हर स्यो रहो चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजा एहसासा उपजाए जियो मैली बाहरो निर्मल जियो ता मैले तिन जन्म जो वह हारे आ एह तिसना वंडा रोग लगा मरण मन हो सारे आ वेदा मैह नाम उत्तम सो सुन है नाही फिर जो बेता लिया कह नानक जिन सच तजया कूड़े लागे तिन जन्म जुवै हारे आ जीहो निर्मल बाहरो निर्मल बाहरो ता निर्मल जीहो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचा नाही मनसा सस माणी जन्म रतन जिन खटिया भले सेवन जाने कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुरु नाले जे को सिख गुरु सेती सरमक होवै ता सरमक से कोई जियो रह गुरु नाले गुर के चरण हृदय त्याय अंतर आत्मा संभाले आप छड़ सदा रह परण गुर बिन अवन जाने कोई कह नानक सुन हो संतो सो सिख सनमुख होए

क्या तुद कर्म कमाया कि कर्म कमाया तुद सरी राजा तू जग महाया जिन हर तेरा रतन रचया सो हर मन नमसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया कह नानक एहो शरीर पुरवार होआ जिन सतगुर सिउ चित लाया ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम जो तरी हर बिन अवरण देखो कोई हर बिन अवरण देखो कोई नदरी हर निहालिया एहो विस संसार तुम देख देव हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवरण कोई कह नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिलया देव दृष्ट होई ए श्रवण हो मेरे हो सच सुन नानू पठाए सच सुन नानू पठाए श्रीला सुन सतबाणी जित सुनी।

0: आकार, कुदरत पाताल आकाशे, कुदरत सर्व्याकार, कुदरत वेद प्राग देवा, कुदरत सर्विचार, कुदरत खाना पीना पहन, कुदरत सर प्यार, कुदरत जाति जिनसी रंगे, कुदरत जी जहान, कुदरत नेकियां, कुदरत वधिया, कुदरत मान बेमान,
1: कुदरत पौन पाने बसंतर,

अवतार हो, पापन विचार हो, नरक सुरग अवतार हो, चस्या हो, चरोवे हो, परिये हो, धोवे हो, जाते जिनसे खोवे हौच मूर्ख हौ स्याणा मुख मुक्ति सार न जाना हौच माया हौ छाया हो मैं कर जंत पाया हो मैं बुझे तांदर सुझे ज्ञान हूणा कथ कथ लुझे

श्लोक वाला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खपोए खार कूड़ कूड़ा न्यू लगा विसरिया करतार किस नाल की चाहे दोस्ती सब जग चलनार कूड़ मिठा कूड़ माख्यू कूड़ डोबैपुर।

सच्चा होए कुड़ की मलत में तन करे छाद होए सचता पर जानिए जा सच करे प्यार ना सुन मरे सीता पाए मुख द्वार सचता पर जानिए जा जुगत जाने जियो धरत का साध कै विच देकरता भी ओ सचता पर जानिए।

0: श्लोक में लपेला दुख दर सुख रोग भय अजाशुकता न हो तू करता करना में नहीं जाऊं करी न हो बलहारी कुदरत वस्या तिरंत न जाई लख्या रहाओ जात में जोत जोत में जाता कलकला पर पूराया तू सच्चा साहब शिव साले जिनकी तीसो पार पाया कौन करते के बात जोक्ष करना सो कर है महला दूजा
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं।

0: नानक मेर शरीर का कृति कृतवा जुग जुग फिर बटाए गए निबुजता सतगुरु संतो का धर्म गिरथवा त्रेता रजते का जोर गिरथवा द्वापर तपे का सत्य गिरथवा हो कलयुग रथगन का कूड़ गिरथवा महला पहला
1: साम गए सितंबर स्वामी सच में अच्छे साज रहे।

0: टिक्का तैज पाली धनम ले छा खाई अंतर पूजा पड़ेक ते बस संयम तुरका भाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाए तरंदा माला पहला
1: मानस खाने करे ने वा छुरी गण तिन गताग तिन घर ब्राह्मण पूरे ना दुना पहे आवे होई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे हर शर्म धर्म का डेरा दूर नानू कूड़ रहा भरपूर मथे टिका तेड़े धोती का खाया।

प्रसाद सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है अठ नंदन प्रथम राग पहरो वै कर ही पंच राग नी संग उचर ही प्रथम पहर वि बिलावली पनया की गाव है बंगली पुन अस लेखी की पह पंचम हरख दिशाख सुनाव है बंगालम मद माधव गाव है ललित बिलाव लगाव ही अपनी अपनी पहांत अष्ट पुत्र पहरव के गाव है गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलाप है संग रागनी पंचौथाप है गौंड करी अरदेव गंधारी गंधारी सीहुति उचारी तिन्हा श्री ए पंचो गाई माल राग कौशक संगलाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक ओ बहरा खौखट ओ पहरानद गाय अष्ट माल कौशक संगलाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठ है तान कलोल गायन तार मिलावही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी लय पहर जा संगलाई पंचो आर जा सुरमा नंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सोहाए सरस बान आहे बिनोदा गावह सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कछे लेपट मंजरी टोडी कही अलाप का मोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कमल कुसम चंपक के नामा गौरा औ कनरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वै गाव है पंचो संग बरंगन लाव है बैरारी कर नाटी तरी गबरी गाव है आसावरी देह पाछ सिंधवी अलापी श्री राग सौ पंचो थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर कष्टम मेघ राग वै गाव है पंचो संग बरंगन लाव है सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गाव है आशा गुनगुनी ऊंचा सुर सुहो पुन कीनी मेघ राग सो पंचो चीनी बैरा तहर गज तहर के दारा जबली तहर नट ओ जल तहरा पुन गाव है शंकर ओ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा

दस बीस कष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस। वाहिगुरु जी का खालसा वाह।

तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सतनाम

कथ कथ कथी कोटि कोट कोटा देंदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक बिगसा वे परवाहो साचा साहिब साच नाए पाख्या पाहो अपार आख है मंग है देह देह दात करे दातार फेर के अग्गै रखी है जित दिसै दरबार।

मन बाँछत फल पाए गुर पूरा हृदय त्याए गुर गोपाल आनंदा जप जप जीव परमानंदा।

संत जना हर मेल हर पाया वड भागिया बाले राम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गा

बिछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कटे हो मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन तुरे पे।

ठीक है। परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संग जियो फतेह सांझी करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो धन्यवाद करन बनदा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जिन्हां दी बख्शिश नाल अज ए दमती जोड़ी ग्रस्त विच प्रवेश कीती। चार लावां दा पाठ दे नाल अज ए एक दूए दे नाल गुरमत अनुसार पति पत्नी दे रिश्ते विच बज गए। सो बहुत बहुत वधाई होवे, बहुत मुबारकां दोहां परिवारां नूं, इस जोड़ी नूं खास करके, क्योंकि गुरसिखी विच ग्रस्त प्रधान है। ते मैं बहुती गल अपनी कविता च ही करांगा। आपां नूं ज्ञान जिहड़ा उह तां गुरु तों मिलदा। सो गुरु कोलों

सो ज्ञान गुरु तो लेना। वैसे दोहे परिवार अपन सारे जानते हैं गुरसिखी विच लोत पोत दोहां परिवारों के विच सिखी नाल प्यार सेवा भावना बहुत आ। असी बहुत सालों तो दोहां परिवारों नूं इत्थे जानते हैं, तुसी भी तकरीबन सारे जानते हैं। सो उन्हां दी कोई विशेष असी जे कोई गल करिए तो वह यही आ कि वह सिखी दे विच हन, सिखी सब तो जरूरी है। सो उन्हां असी कोई उन्हां नूं ज़्यादा गुरु की हजूरी दे विच जे बहुत बड़े कर करके दसीए नहीं, ये नहीं गल हुंदी। सो सारे ही प्रेम वाले परिवार ते यही अरदास है कि सच्चे पातशाह इन्हां नूं हमेशा सिखी दी नाम बाणी दे नाल जोड़ के रखी। सो एक गल मैं मोहजीत गुरसिमरन, वैसे मोहजीत गेम इज ओवर। सो बहुत डेढ़ दो साल तो तैयारियां हो रही सी। सो वो मैं एक गल याद आ गई, जिदा थोड़ा आनंद कार्ज होया इस तरह ही एक बारी अपने एक होर जोड़ी का आनंद कार्ज सी। उस आनंद कार्ज के मौके पर एक गोरा उन्होंने ब्याह से आ गया, तो वह जदों घरों ना मुंडा तैयार करके बाहर तोरन लगे तो भैणा ने पिछों पल्ला फड़ लिया। उन्होंने पूछता ये कातों फड़ दिया, वो कहिंदा इहनूं हले भी चेता करवाउंदियां भी ठहर ला, हले भी रुक जा जे रुक सकदा, पर नहीं रुकिया। बाहर आ गया, मोहरे घोड़ी खड़ी सी। वो गोरा कहिंदा घोड़ी कातों लियांदी आ, घोड़ी ते चढ़ाया। वो कहिंदा इहनूं तां चढ़ाउंदे आ भई जे हले भी भज सकदा तो भज ला, पर ये नहीं भजया। फिर अगे आके जदों दरबार साहब दे विच बैठ के उन आनंद कार्ज देखे ना, गोरा आशश कर उठा, कहिंदा मैं जिंदगी च बड़े होर धर्मां च होर कल्चर दे विच बड़े ब्याह देखे, पर जो मैनू कहिंदा अज तुहाडा आनंद कार्ज देख के आनंद बनिया, जिंदगी च पहली बार होया मैं कायल हाँ तुहाडे इस लावां दियां जो गुरु घर की मर्यादा है ते जो सिक्ख्या मिलती है, कहिंदा मैं बहुत कायल होया इत्थों। ते उस तो बाद जदों अगले दिन वो पार्टी ते चल गया, तो पार्टी तो हुण उत्थे सारे भंगड़ा कई भंगड़ा पाउंदे हुंदे कई भंगड़ा, तो अपने बंदे आम करके ना उंगली तां नूं चक के भंगड़ा पाउंदे आ। वो कहिंदा ये इदां कदों करदे आ, कहिंदा ये कहिंदे एक होर फस गया एक होर फस गया। सो चलो शुगल मेला भी हुंदा रहना जी, तो आओ कविता दे विच ही गल करांगे क्योंकि समा पांच सत्त मिनट का मिलिया। विद्वाना ने आपो अपने तरीके नाल विचार दिते, तो एक विचार ये भी है कि यह राह गृहस्थ का बड़ा औखा, ये राह गृहस्थ का बड़ा औखा, सोहना फुल भी है तिखा खार भी है, कौड़े मिठे ने दोवें स्वाद इत्थे, ते कदे प्यार ते कदे तकरार भी है। गंढड़ी एक है दोहां दे सिर उत्ते, गठड़ी एक है दोहां दे सिर उत्ते, हौला फुल भी है पीड़ा भार भी है, जेकर चुकोगे दोवें ही एक होके तुहाडी जग उत्ते उची शान होसी, बदो फुलोगे तुसी इस दुनिया ते सदा गुरु नानक मेहरबान होसी, सदा गुरु नानक मेहरबान होसी। बाकी गल मैं अपने गीत विच करदा सत।

रज रज खुशियां मानो, जिस मालक ने संजोग बनाया उसनू समझो जानो। एक जोत दोए मूर्ति हो गए सब रब नू।

देव ए नमः अष्टपदी सिमरो सिमरो सिमरो सुख पावो कल कलेश तन माहि मिटावो सिमरो जासु विश्वम पर इकै नाम जपत अगणत अनेकै वेद पुराण सिमरत सुदाख्यर कीने राम नाम के अखर किनका एक जी जी बसावै तां की महिमा गनी नावै कंखी एक दरस तुहारू नानक उन संग मोह उधारू सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसाई प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हराए प्रभ कै सिमरन दुश्मन टराए प्रभ सिमरत कछ बिघन लागै प्रभ कै सिमरन कछ बिघन लागै प्रभ कै सिमरन अंदर जागै प्रभ कै सिमरन भावना व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सरम निधान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नाउ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जापता पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसे दूजा प्रभ कै सिमरन बिनसाय दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन होय सो भलाओ प्रभ कै सिमरन सो फल फलाओ से सिमरह जिने आप सिमराय नानक ता कै लागू पाए प्रभ का सिमरन सब ते उचाओ प्रभ का सिमरन उदरे मुचाओ प्रभ का सिमरन तृष्णा बुझाए प्रभ का सिमरन सब के सुझाए प्रभ का सिमरन नाहि जम त्रासा प्रभ का सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिदमा समाई प्रभ जी बसै साध की रसनाओ नानक जन का दास दसनाओ प्रभ को सिमरै से धनवंते प्रभ को सिमरै से पतवंते प्रभ को सिमरह से जन प्रवानु प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरह से ऐसे सुख वासी प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयालाओ नानक जन की मंगर वालाओ प्रभ को सिमरह से परोपकारी प्रभ को सिमरह तन सर बलिहारी प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे प्रभ को सिमरह तन सुख बिहावै प्रभ को सिमरह तन आत्म जीता प्रभ को सिमरह तन निर्मल लीता प्रभ को सिमरह तन अंध कनेरे प्रभ को सिमरह बसे हर नेरे संत कृपा ते अंदन जाग नानक प्रभ संत कृपा ते अंदन जाग नान सिंह कूड़ै भाग प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे प्रभ कै सिमरन कबहु ना झूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी प्रभ कै सिमरन हिचले आसन प्रभ कै सिमरन कवल विगासन प्रभ कै सिमरन अनहद झुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमरै से जन जन को प्रमया नानक तीन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग भेद उपाए हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच हुकुण जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिम हर कारण कन्ना हर सिमरन कियो सगल अकारा हर सिमरन मैं आप नंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तन पाया सलोक दीन दर्द दुख भंजना कड़कड़नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ सात अष्टपदी जय मात पिता सुत

चलाए जह मुश्किल हुआ आत भारी। हर को नाम खिदमै हो दहारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तराए। हर को नाम कोड पाप पर हराए, गुरमुख जाप नाम जपु मन मेरे। नानक पाव हो सुख नेरे, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया। हर का नाम जपत होए सुखिया, लाख करोरी बंधन पराए। हर का नाम जपत निस्तराए, अनक माया रंग तिखना बुझा भय। हर का नाम जपत आगा वै, जिह मार्ग इह ज्योत केला। तह हर नाम संग होत सहेला, ऐसा नाम मनस दा त्याई। नानक गुरमुख परम गत पाई, छूटत नहीं कोट लख बाही। नाम जपत पार पुराही, अनक बिघन जाया संग हरै। हर का नाम तत्काल उदहारै, अनक जोर निरमै मर जाम। नाम जपत पावै विश्राम, हो मैला मन कभु न धोवै। हर का नाम कोट पाप खुवै, ऐसा नाम जपह मन रंग। नानक पाई साधक संग, जेह मार के गने गा जाहे न कुसा। हर का नाम ओहा संग तोसा, जह पांडा महा आंध गुबारा। हर का नाम संग उजियारा।

छू रहा है। जे को जन्म मरण ते डराए साजना की सरणी पराए जिस जन को प्रभु दर्स प्यासा नानक ता कै बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जा कै मटा अमान आपस को जो जाना नीचा सो गणिया समते उच्चा जा का मन होए सगल की रीना हर हर नाम तन घट घट चीना मन अपने ते बुरा मटाना पेखा सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन सम दृष्टिता नानक पाप पुन नहीं ले पाओ निर्धन को धन तेरो नाओ निथावे कौ नाओ तेरा थाओ निमाने को प्रभति रु मानो सगल कटह को देव दानो करण करा बनहार स्वामी सगल कटह के अंतर जामी अपनी गातमित जानो आपे अपन संग आप रबराते तुमरी उस्त तुम ते होए नानक अवरण जान सकोए सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जाप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया सत्संग दरमत मल हिरिया सगल उद्यम मह उद्यम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मह अमृत रबानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जेह घट वसै हर नाम सलोक निर्गुण यारे अन्याव सो प्रभ सदा समाल जिनकी अति स्थित रख नानक निबही नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कम दृष्टानी जिन तू सास वार सी गारिया गर्भ अगन मह जिन उबारिया अंबार व्यवस्था तुद प्यारा दूध भार जोबन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साक सैन मुख प्याओ बैठ को दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बुझाए बख्सले हो तो नानक सी जाय जेह प्रसाद धर पर सुख बसाए सुत प्रात मीत बनता संघ हसाए जे प्रसाद पीवा शीतल जलाओ सुखदाई पवन पाव कमला जे प्रसाद भोगै सब रसाओ सगल समग्री संग साथ बसाओ दीने हस्त पाव करण तेर नेत्र सनाऊ तस्य त्याग अवर संग रचना

माता को की जय सदर नमस्कार। जाके मन लग प्रमीठा सर्व सुखता हूँ मन उठाओ, जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया। ग्रंथ साहु अपनी दे रास खात पीत बरतै अंत उलास, अपनी बान कच बाहुल सहले अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहुत उसका विश्वास न होवै, जिसकी बस्त से आगे रखे प्रभु की आगे मन है मत है उसते चौगुन कर निहाल। नानक साहब सदा दयाल। अनक भात माया के हेत सर पर होवत जान अनेत, बिरखी छाया स्यों रंग लावै ओह बिन सैव मन पछतावै। जो दिसै सो चालन हार लपट रहो तह अंध अंधार, बटाऊ स्यों जो लावै नेह ताको हाथ न आवत के हे। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानका पलै लाई। मिथ्या तन धन कुटम सबाया मिथ्या हो मैं ममता माया, मिथ्या राजो बन धन मालो मिथ्या काम क्रोध बिकरालो। मिथ्या रथ हस्ती अस बस्त्राव मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ताव, त्रि मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या पशु प्रकृत गुमान। आस्त्र भगत साध की शरण नानक जप जप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्प को हिर है। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपार, मिथ्या रसना भोजन अनसवादो मिथ्या चरण पर बकार को तावै है। मिथ्या मन पर लोभ लुभावै है मिथ्या तन पर उपकाराओ, मिथ्या बासलेत बिकाराओ बिन बूझे मिथ्या सब भय सफल देहे। नानक हर हर नाम लय बिरती साकत की आरजा, सात बिना कहो सूचा बिरथा नाम बिना तन अंधो, मुख आवता कह दुर्गंधो बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बेहाय। मेघ बिना जो कीती जाई गो बेद भजन बिन बृथे सब काम, जो कृपन के नरार्थ दाम धन धन तेज

ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मानता है। ब्रह्म ज्ञानी जिस करें प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी या परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जानै भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश।

का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक उतारै जो अंतर नाम शर्म पेख भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानक ओह परस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ न मिथ्या रसना नाही

कर कृपा अंतर उर तारी पास प्रेद मुक्त पाथर को तारी सर्व रोकाय औखत नाम कल्याण रू मंगल गुण गाम काहू जुगत किता न पाइय धर्म नानक तिस मिला जिस लिखिया तुर कर्म जिसका ए मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास संत पाए तन पाया सदा निकट निकट हर जानो सो दादरगा परवानो अपने दास को आप कृपा कराए तिस दास को सब सो जी पराए सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आद्या आग्या आत्म हितावै जीवन मुक्त जीवन मुक्त सो कहावै तैसा हरक तैसा उस रोग सदा अनंत नहीं बियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मन तैसा अभिमांडो तैसा रंग तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओ पुरखिया जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले करण करावण जोग प्रभावै सोई फुन होग पसरियो आप होए अंतरंग लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग जैसी मादे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश है।